0: Avicii, It's Hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole

मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, आई एम मच वर्स। जब मैं डेटिंग ऐप पर ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग करती हूँ तो इससे दो चीज़ें होती हैं, आइदर दोज गाइज हु लव अ चैलेंज गेट अट्रैक्टेड टू मी कि अच्छा देखते हैं ये बाकी लड़कियों से भी ज़्यादा कठिन है, लेट्स क्रैक दिस कोड, नहीं मुन्ना हम फनी हो रहे थे, और दूसरी चीज़ ये होती है दैट देर आर दीज फनी गाइज हु नो अ जोक व्हेन दे सी वन एंड देन दे गेट इन टच विद मी एंड दे लाइक यार तू तो बहुत सही बंदी है, आई एम लाइक तू भी बहुत सही बंदा है दैट यू फिगर्ड आउट माय जोक। लेकिन जब भी इसके बाद मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आई जस्ट टर्न अराउंड एंड सेड मैंने तो पहले ही कहा था मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, आई एम मच वर्स, यू शुड हैव नोन बेटर, देख रहे हो चित बी मेरी एंड पट इज ऑल्सो माइंड। तो अगर आप भी डेटिंग ऐप पर जाना तो चाहते हो बट यू डोंट नो हाउ टू रॉक योर वर्ल्ड ऑन अ डेटिंग ऐप, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड आई विल टीच यू हाउ टू वाइब इट राइट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड आई एम नॉट लाइक योर एवरेज गर्ल, I am much worse. On that note, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: Mirchi. It's hot.
1: Tiki hero.

0: मिर्ची, इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1, गो।
2: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, एआर रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन, द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवन्ट कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
0: नंबर 20। इसमें

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? दिस एपिक फिल्म इज री रिलीजिंग, सो वॉच इट अगर आपको वक्त मिले। बिलाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन द शो, दिस इज चांद मेरा दिल ऑन नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 17.

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, एआर रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो से म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by A.R. Rahman and Irshad Kamil.
1: Number 16.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।
1: पड़े अगर तेरे लिए मर भी जाना, उफ नहीं कर दीवाना। मामा माशूका, ओ माय माशूका।
0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।

dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची डॉट 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी. पिक ऑफ द वीक.

0: ग्रीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची इट्स हॉट। के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 2। वाह।

0: हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में। नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क

Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर 1।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more remix.

0: Mitchie, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ओके देन, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, एक री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार श्रुदय। इट्स अ नई नवेली एंट्री, उड़ी उड़ी ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा है, पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगली वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
2: मर बड़े मजाकी धोकनी ए चंदा मैं थारी चांदनी मन दामन में पा ही कुसी रे जम जम जम।
0: या फिर द गुजराती एंथम खलासी,
3: ए वो फाड़े से खलासी मने कई दोने,
0: but I truly think that Coke Studio का impact किसी एक गाने तक limited नहीं है। This is one platform जो हमें याद दिलाता है that India का music scene कितना बड़ा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद language बदल जाती है, folk tradition बदल जाते हैं, instruments बदल जाते हैं, लेकिन mainstream music में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी, और वो Coke Studio ने किया। उसने folk artists को सिर्फ feature नहीं किया, उनको center stage दिया है। चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में folk और rock एक साथ है। That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artists और folk musicians एक साथ मिलते हैं, जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं। दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है। And countdown का जो अगले वाला गाना है वो exactly ऐसे ही collaboration है। एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे pop star, दूसरी तरफ कुटले खान जैसे contemporary राजस्थानी आर्टिस्ट, रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: हिमेश रेशमिया की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, रजत नागपाल, राणा सोतिल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहां हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 4 4 4

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना। इट्स टाइम टू पुट स्पॉट लाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई आर्टिस्ट रेकमेंड करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। हर आर्टिस्ट, हर इंसान, मैं, आप किसी ना किसी ड्रीम को चेस कर रहे हैं और हम उसकी जर्नी में हैं अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम।

0: गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, एमसी स्क्वायर, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। एमसी स्क्वायर की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बी ओपन टू इट, लिरिक्स को ध्यान से सुनना। एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी का गाना दिस इज लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

की डाली मेरे सुपने में, एक घेर पड़ा कति खाली मेरे सुपने में, एक अरहड़ भरी ट्राली मेरे सुपने में, सरसों के फूल की बाली मेरे सुपने में, एक चूल्हे आगे पोती मावा स्वाद हाथ की रोटी का, एक कोलू वाला खेत मेरा मिल गए दस खो गया एक मेरा, एक सूरज छुपता खेत जगे सरवाड़े में, एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़।

हार्ड हिटिंग लिरिक्स. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट, सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन को चेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर द मैन, यू आर द लेजेंड. उनका हर गाना मेक्स अस वांट टू ग्रूव. इस बार गाने का नाम है बैंगल्स. आपके प्यार की वजह से इस गाने ने वापस एंट्री मारी है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पॉप म्यूजिक इज ऑल अबाउट हाउ इट मेक्स अस फील। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं तो वो नए नहीं होते पर पुराने भी नहीं लगते, तभी हम उन्हें क्लासिक्स बुलाते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज

0: want to do is get a little loving good. Let me take a hot in another world. Give it to me now, give it to me now. Let me dig, I dig, I dig that body.
1: I swear, ये गाना सुन के स्कूल की छुट्टियां याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे और कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मै दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अश्काय और मैं आपके रिकमेंडेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन 2 पोजिशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: Number 2.

Energy. It's hot.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

हॉट मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग माय कॉफी ड्रिंकर्स, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। मिर्ची मॉर्निंग्स हैज ऑफिशियली जस्ट बिगन। अगर तुम अभी फिलहाल ट्रैफिक में अटके हुए हो या फिर ट्रेन का वेट कर रहे हो या फिर कहीं सबवे में अपना सैंडविच और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेकर खड़े हो या फिर घर से वर्क करते हुए कैमरा ऑफ करके जी रहे हो, वेलकम, यू आर अमंग योर पीपल। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग दैट मैटर्स, जैसे कि बॉलीवुड, घर का नॉस्टैल्जिया, रैंडम लाइफ थॉट्स एंड वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स, एंड साथ साथ में वो एक सवाल कि चाय 50% ज्यादा अच्छी क्यों लगती है जब कोई और बनाता है। टेल, तुम्हारे पास इसका जवाब है या नहीं है? अगर है तो मुझे भी बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चिपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुबह सुबह का मूड थोड़ा सा और बॉलीवुड बनाते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लो। फॉर ऑल द होपलेस रोमांटिक्स, द प्लेलिस्ट रिपीट ऑफेंडर्स, और वो जो विशाल मिश्रा का गाना सुनकर विंडो के बाहर सिनेमैटिक स्टेयर मारते हैं, उन सबके लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। IUSA इंक प्रेजेंट्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी। द पागलपन टूर 2026 इज हैपनिंग ऑन दिस फ्राइडे 26th of June at Hard Rock Live at Etis Arena, Atlantic City, New Jersey, जिसके दरवाजे खुल जाएंगे 7 बजे से। और अगर उसके टिकट्स जीतने का एक मौका तुम ढूंढ रहे थे तो वो मौका आ चुका है। बड़ा ही इजी बीजी क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ तुमसे, जिसका मिर्चीदार जवाब देकर तुम ये टिकट्स जीत सकते हो। विशाल मिश्रा किस सिटी में परफॉर्म करने आ रहे हैं? तुम्हारे ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक सिटी, ऑप्शन बी अलास्का सिटी, एंड ऑप्शन सी अंधेरी वेस्ट। अब फटाफट से अपने सही जवाब भेजो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर 9033647244। विशाल मिश्रा लिखना है, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है, और ऑप्शन ए बी या सी जो भी तुम्हें सही लगता है उसे भेज दो फटाफट से अभी इस नंबर पर। या फिर और जल्दी अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट टिकट जीतने हैं तो मुझे डीएम करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और अपने सही जवाब तुम यहाँ पर भी भेज सकते हो। डेफिनेटली फॉलो मी देयर, एंड अभी फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स सुनते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और आज है 19th of June और आज का दिन हिस्ट्री बुक्स में ओवर अचीवर निकला था. क्यों? लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले चलते हैं 1865 में. आज के दिन अमेरिका में जूनटीन्थ मार्क किया जाता है. ये वो दिन है जब एनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स इन टेक्सास वर ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड दैट दे वर फ्री. फिर आते हैं 1944 पे. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर बैटल ऑफ द फिलिपीन सी शुरू हुआ था. 1953 में न्यूयॉर्क में जूलियस और एथल रोजनबर्ग का एस्पियोनाज केस में एग्जीक्यूशन हुआ था. और इंडिया में 1966 में मुंबई में शिवसेना एस्टैब्लिश हुई थी. 1981 में इंडिया लॉन्च एप्पल, नॉट आईफोन वाला एप्पल, इट्स अरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट. और अब जल्दी से तुम्हें याद दिलाती हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला. विशाल मिश्रा का पागलपन टूर होने वाला है थैंक्स टू साई यूएसए इंक ऑन नेक्स्ट फ्राइडे 26th of June 7 PM ऑनवर्ड्स एट हार्ड रॉक लाइव एट एटीज अरेना अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी. और अगर इसके टिकट जीतना चाहते हो अभी के अभी यहाँ पर, तो फटाफट से मेरे एक सिंपल से सवाल का मिर्चीदार जवाब दो. विशाल मिश्रा का कॉन्सर्ट किस सिटी में हो रहा है? ऑप्शन ए अटलांटिक सिटी, ऑप्शन बी अलास्का सिटी एंड ऑप्शन सी अंधेरी वेस्ट. बड़ा बच्चे व्हाट्सएप भेजो मुझे 9033 मिर्ची पर 9033647244. दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर. फॉर्मेट होगा विशाल मिश्रा, अपना पूरा नाम और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी लिखकर मुझे भेजना है. या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और साथ में अपने ईमेल आईडीज भी भेजना. और अभी फिलहाल लगाती हूँ कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसला. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज योर वेदर डिपार्टमेंट का रिमाइंडर कि आज मौसम कैसा होने वाला है। राइट नाउ इट्स अराउंड 75 डिग्रीज एंड इट्स पार्टली क्लाउडी, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है। हवा थोड़ी सी फिल्मी चल रही है एंड इट्स मेकिंग इट फील अ लिटिल बिट कोल्डर, 72 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स की तरह बरसात नहीं होने वाली अगले 24 आवर्स में। वी सॉ सम रेन्स यस्टरडे, लेकिन आज 0 मिलीमीटर्स की बरसात है। टेम्परेचर का आज का रेंज है 67 से 82 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होने वाला है 64 से लेकर 80 डिग्रीज फारेनहाइट तक। इंटरेस्टिंगली आज कल से थोड़ा सा ज्यादा कूल है। यस्टरडे वी टच्ड 89 डिग्रीज फारेनहाइट, आज सिर्फ 82 मैक्सिमम होने वाला है टेम्परेचर। और जाते जाते बाहर अपना सन प्रोटेक्शन SPF 50 लगाना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, लेयर के प्लेयर बनो और चिपके रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मिर्चीदार गाने आने वाले हैं अभी, राइट हियर राइट नाउ। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

ऑलराइट, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त. मैं हूं तुम्हारी होस्ट. शो का नाम है मिल्ट्री मॉर्निंग्स और अब बारी है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने की. सबसे पहले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने स्विट्जरलैंड जाकर प्लान सीज फायर टॉक्स कंटिन्यू करने का प्लान होल्ड पर रखा है आफ्टर रीजनल टेंशंस हैव इंक्रीज्ड. व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि यूएस वीपी जेडी वैन स्विट्जरलैंड ट्रिप पोस्टपोन कर रहे हैं फॉर नाउ. नंबर टू पर इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मीडिया चैटर को थोड़ा सा ह्यूमर के साथ रिप्लाई किया है आफ्टर अ फोटो फ्रॉम द G7 गॉट अटेंशन. उनका वाइब बेसिकली था, गाइस कभी कभी फोटो बस फोटो होती है, उस पर न्यूज नहीं बननी चाहिए. एंड लास्टली दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहोल्ड किया है जिसके अकॉर्डिंग टेलीग्राम इंडिया में नीट यूजी 2026 री एग्जाम पीरियड के दौरान टिल June 22nd अनअवेलेबल रहने वाला है. कोर्ट ने कहा है मेजर्स को लिमिटेड और प्रोपोर्शनेट माना गया है. And that's it for Mirchi Hour का 3 for this hour. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. एंड सारा अली खान जस्ट टीम्ड अप विद हेनरी कैविल फॉर अ ब्रांड कैंपेन एंड सोशल मीडिया कलेक्टिवली ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड सेड एक्सक्यूज मी. द पिक्चर्स आर आउट एंड सारा कैप्शनड इट अ रॉयल अफेयर एंड इंटरनेट ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया अनएक्सपेक्टेड कोलैब अनलॉक्ड. ऑनेस्टली देसी ऑडियंस का रिएक्शन वॉज वेरी सिंपल. एक साइड पर ओ माई गॉड व्हाट अ पेयर, एंड दूसरी साइड पर क्या किसी ने ये सारा के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा है अभी तक. एंड कैन वी अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस बॉलीवुड ग्लैम मीट्स ग्लोबल स्टार पावर. और इंटरनेट की फेवरेट हॉबी कंटिन्यूज टू जूम इन, ओवर एनालाइज एंड क्रिएट रूमर्स वेयर देर आर नन. और अब बॉलीवुड के रूमर्स से चलते हम रियल लाइफ के स्टार पावर की तरफ, यानी कि तनिष्क जो लेकर आ रहे हैं फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज करो वहां पर जाकर ओल्ड गोल्ड एंड यू कैन गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेजेस. यानी कि अगर डायमंड खरीदोगे पुराना गोल्ड देकर तो तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है. और साथ साथ में अगर तुम्हारा पुराना गोल्ड जो है वो 9 कैरेट से अबव है या 9 कैरेट है तो उस पर 0% डिडक्शन भी मिलने वाला है तुमको एक्सचेंज कराते वक्त, विच इज अ प्रीटी स्वीट डील आई मस्ट से. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है. एंड ऑफ कोर्स अब बारी आ चुकी है मिर्चीदार बैंगर्स चलाने की, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRI. Yes, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं आरजे से योगा गुरु बन चुकी हूँ। मेरा नाम है प्रिसानंदा जी महाराज। इंटरनेशनल योगा डे इज ऑन दिस संडे, इसीलिए तुम्हें मिर्ची पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लासेस मिल रही है, जिसको तुमने मांगा नहीं, लेकिन हम फिर भी तुमको देने वाले हैं। और आज के दिन मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ क्या। प्रेजेंटिंग द यस बॉस आसना। सबसे पहले स्टैंड टॉल। स्टेप टू इज योर बॉस से समथिंग कम्प्लीटली इनकरेक्ट इन फ्रंट ऑफ 12 पीपल। स्टेप थ्री, यू स्लोली नॉड विद अ टाइनी स्माइल। एंड स्टेप फोर, अपने सर को ऊपर उठाओ। स्टेप फाइव, अपने सर को नीचे लेकर आओ। एंड देन रिपीट। स्टेप सिक्स, अपने सर को ऊपर उठाओ। स्टेप सेवन, अपने सर को नीचे लेकर आओ। एंड स्टेप एट, कहो दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट पॉइंट बॉस। स्टेप नाइन, होल्ड दैट पोजिशन अंटिल योर बॉस इज इम्प्रेस्ड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और ऐसे करते करते तुम अपने फिटनेस गोल्स पर पहुंचो या ना पहुंचो, अपने प्रमोशन गोल पर शायद पहुंच सकते हो, बट एट व्हाट कॉस्ट।

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करूं।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: कैन यू फील द टेंशन लीविंग योर शोल्डर्स राइट नाउ एंड एंटरिंग योर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू? And that, my friends, is the most practiced yoga pose in corporate America. Tumhare yoga guru ka kehna hai, repeat after me. I am calm, I am composed. And of course, I'll keep listening to Mirchi Mornings par Priscilla. Prisananda ji Maharaj ko. But jokes apart, yoga actually started as a practice of balance, breath and awareness. And honestly, jo yoga karte hain, unko pata hoga how important it is for your physical and mental health. And on that note, fatafat se mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Filhal, stay tuned and stay hot.

0: தீ தக திட்டதா
1: தீ தக திட்டதா தீ தக திட்டதா தீ தக திட்டதா தீ தக

0: lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Virchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
1: Jewels wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड रेटिंग एट $4,150 4,150 के साथ आज गोल्ड की प्राइस कल से अबाउट $100 चीपर ट्रेड कर रहे हैं। राज ज्वेल्स के साथ इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें। वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ फादर्स डे की सिलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें। आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: There you go, your sparkle report for the day is here. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इट्स मिर्ची मॉर्निंग्स पर, वो टाइम जहाँ पर हम पता करते हैं टॉप न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले, अ न्यू रिपोर्ट सेज गोल्ड प्राइसेस कुड क्लाइम सिग्निफिकेंटली ओवर द कमिंग मंथ्स इफ प्रोजेक्शंस प्ले आउट। द पीपल हु बॉट ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए आर सडनली फीलिंग वेरी विजनरी। नंबर टू पर, इंडिया टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा हैज रिक्वेस्टेड अथॉरिटीज टू रिव्यू हर एक्सक्लूजन फ्रॉम द एशियन गेम्स 2026 स्क्वाड, सेइंग द डिसीजन फेल्ट डिसअपॉइंटिंग एंड दैट नो स्पेसिफिक रीजन वॉज कम्युनिकेटेड। एंड फाइनली, मेक्सिको बिकम्स द फर्स्ट टीम टू रीच द नॉकआउट stage of FIFA World Cup 2026 after a 1-0 win over South Korea. Midfielder Luis Romo scored the winner, and honestly, imagine scoring your first World Cup goal and casually sending your team through. That's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connect with me Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Such an

0: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए राशियों का हाल चाल, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इट इज यानी मेष राशि, आज हीरो मोड ऑन कर लो, अपॉर्चुनिटीज वेट नहीं करेंगी। तुम भी वेट मत करो, बस एक्साइटमेंट में अमेजोन कार्ड पूरा भर के शॉप मत कर लेना। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बिग कॉन्फिडेंस एनर्जी आज तुम्हारी लाइफ में है। एम थोड़ा सा आउटरेजियस रखो, बिकॉज यूनिवर्स आज तुम्हें सब कुछ दे रहा है। लकी कलर इज ब्लू, लकी नंबर इज 42। जेमिनी यानी मिथुन राशि, पास्ट फ्यू वीक्स का हार्ड वर्क फाइनली विजिबल हो रहा है, बस खुद को सेल्फ सैबोटाज करने की जो आदत है उसे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। लकी कलर इज आइस मिंट, लकी नंबर इज 8। कैंसर यानी कर्क राशि, यू सर्वाइव्ड अ लॉट रिसेंटली एंड टुडे गिव्स मेन कैरेक्टर ग्रोथ। इमोशनल मसल्स भी मसल्स ही होते हैं। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 26। लियो यानी कि सिंह राशि, यू हेल्प समवन एंड यूनिवर्स नोटिस्ड। रिवॉर्ड पेंडिंग है, तब तक के लिए ट्रीट योरसेल्फ मे बी विद सम कॉफी एंड यम्मीलिशियस केक। लकी कलर इज मैंगो कलर, लकी नंबर इज 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, क्वाइट डे, डोंट ट्रस्ट इट, समथिंग बिहाइंड द सीन इज मूविंग, स्टे अलर्ट बट नॉट डिटेक्टिव इन ऑफिस पार्टी वाला मोड। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे कलर, लकी नंबर इज 31। एंड दैट्स इट फॉर योर मिर्ची राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 यानी कि बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम राशि जोन, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, करियर एनर्जी राइजिंग, एम्बिशन काफी अच्छा है, बस प्लान बना लो तो और भी अच्छा हो जाएगा। गूगल कैलेंडर पर मैनिफेस्टेशन का टूल होना चाहिए। लकी कलर इज रूबी, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लुक्स लाइक यू विल नीड टू स्पीक अप टुडे। पोलाइट रहो लेकिन क्लियर रहो। डिप्लोमेसी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिर्ची। लकी कलर इज मिडनाइट प्लम, लकी नंबर इज 23। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, मनी मूड को चेक कर लो, इनकमिंग वर्सेस आउटगोइंग देख लो, अपना फायदा होना चाहिए, नुकसान ही इतना स्पेंड करना। लकी कलर इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 11। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, अ डील में लुक टू गुड फॉर यू, लेकिन थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस कर लो, रीड द टाइनी टेक्स्ट कर लो, अच्छे से सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। लकी कलर इज स्टील ब्लू, लकी नंबर इज 37। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज तुम्हारी क्रिएटिव स्ट्रीक स्ट्रांग है, लेकिन नेक्स्ट लेवल टीम वर्क में है, अकेले सारी चीजें नहीं हो सकती है, बी केयर। लकी कलर इज मिंट एंड लकी नंबर इज 2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी मीन राशि, स्टॉप वेटिंग टू बी नोटिस्ड, अपने लिए खुद आवाज उठाओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पिच योर आइडियाज एंड आज थोड़ा सा बोल्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ दुनिया को देखना चाहिए। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल एंड लकी नंबर इज 19। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

और बस ऐसे ही हम आ गए हैं शो के एंड तक. मैं हूँ प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. और अभी फिलहाल तुम ऑफिस पहुंच गए हो, स्कूल ड्रॉप हो गया है, चाय रिफिल हो गई है, या फिर होपफुली तुम्हारा मूड थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है. बिफोर आई लीव यू, एक लास्ट पीस ऑफ एंटरटेनमेंट की गॉसिप फॉर योर डे. अपेरेंटली जेसन मोमोआ हमारे कार्ल रोगो, He had some seriously nice things to say about Vidyut Jamwal, हमारे इंडिया के अपने ओन जैकी चैन. While talking about working together in Street Fighter, Momoa said Vidyut is one of the most beautiful looking men he's ever seen. He also called him unbelievably talented and even joked that Vidyut should help him get a job in Bollywood and that they should do something together. Honestly, I absolutely support this energy. We want Jason Momoa in Bollywood and main chahti hu ki agle 5 saalon tak sirf unko lekar movies banti rahe. Because imagine one side action hero ki entry hogi, dusri side Bollywood ka slow motion walk hoga, teesri side par SRK honge aur chauthi side par Jason Momoa background mein kahin na kahin se nikal kar aa rahe honge, maybe villain banke ya phir hero bankar. And can we also appreciate men supporting men? Healthy compliments, we need more of that, please. And somewhere in India now, parents will start asking their kids to go to the gym and build like Jason Momoa. Anyway, on that note, I want to thank you for spending your mornings with me. आज weekend शुरू हो चुका है, तो have a great one. मैं जाती हूँ तुम्हें कुछ मिर्चीदार bangers के साथ छोड़कर. खाओ पियो, ऐश करो, और मुझे अगर miss करोगे तो मुझसे बातें कर लो. Insta और X पर मेरा handle name है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned.

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर।

0: ये लाइफ की जर्नी है ना, जर्नी, इसको जीते जीते हम यही बातें कर रहे होते हैं ना, ये बदल गया, वो बदल गया, अरे देखो ये कैसे हो गए, अरे देखो वो कैसे हो गए. लोग बदल जाते हैं यार विद टाइम, दैट इज ट्रू. लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज तक कभी नहीं बदली. अब इसे चीज बोले, इंसान बोले, इमोशन बोले, क्या बोले.
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And now you tune in with me on Mirchi. और मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ ना, वही मैंने कहा कि चीज बोले, इंसान बोले, इमोशन बोले, क्योंकि ये सारी चीजों से ही हम रिलेट कर पाते हैं जब भी हम बात करते हैं चांद की. हाँ, कभी हमें चांद जो है वो इंसान सा लग रहा होता है, हम चांद को इस तरीके से रेफर कर रहे होते हैं जैसे कि वो वाकई में कोई इंसान है. कभी चांद बिकम्स एन इमोशन एंड कभी चांद बिकम्स जस्ट अ चांद. इट्स लाइक दैट. एंड चांद, यू नो, वो चीज है, वो शख्स है, वो इमोशन है जो कि आज तक कभी नहीं बदला. दिस चांद हैज ऑलवेज सीन अस ग्रो. मतलब हम जब छोटे थे, मुझे याद है क्लियरली, अपने बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो आई रिमेम्बर कि मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ गया और रात में अपनी यूनिफॉर्म धोने के बाद मैं छत पे जाया करती थी. हाँ, रात में यूनिफॉर्म धोती थी मैं, अगले दिन स्कूल के लिए, गर्मियों की बात कर रही हूँ क्योंकि कपड़े सूख जाया करते थे, और फिर मैं छत पे जाया करती थी और छत पे बैठकर मैं चांद देखा करती थी. इतना प्यारा लगता था ना, और तभी से ही मेरा चांद के साथ कुछ गहरा सा रिश्ता हो गया. एंड कल बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी क्योंकि अ फ्यू डेज अगो ब्लड मून वाला सिनेरियो था एंड तब भी चांद देख रहे थे. एंड आई रियलाइज दिस वन थिंग कि हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, हमारी जिंदगी में इतने चेंजेस आए, सब कुछ हुआ, और बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं हु हैव विटनेस्ड आवर जर्नी, हु हैव विटनेस्ड द चेंजेस. लेकिन क्या है कि वो लोग जो है ना, वो हमारी जर्नी और चेंजेस के साथ खुद भी बदलते गए हैं जैसे जैसे उन्होंने चीजें हमारी जिंदगी में देखी है. लेकिन ये चांद जो है ना, ये नहीं बदला. इसका हमसे वो जो रिश्ता है ना, ये भी नहीं बदला. और ये जो चांद है ना, इसने हमें कभी जज नहीं किया हमारी जर्नी के इन ट्रांजिशंस को लेकर भी. तभी तो मैंने कहा कि एक चीज है जिसने हमारे अंदर चेंजेस देखे लेकिन खुद कभी चेंज नहीं हुआ. क्या बोलते हैं आप इस बारे में, मुझे डीएम करके आप बता सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. और अभी के लिए फिलहाल मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा. आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कैदी नंबर 786 की कहानी जब सुनाई जाती है ना तो वीर जारा की लव स्टोरी निकल कर आती है।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड 22 साल बाद यश जी ने फिल्म सिलसिला के बाद अमित जी को डायरेक्ट करने का सिलसिला शुरू किया था इन द फिल्म वीर जारा। इस फिल्म का म्यूजिक वाज सच कि दिल में समाकर गूजबम्स के तौर पर स्किन से निकल आता है। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द म्यूजिक कॉम्पोजिशन। वेल, मूवी सिंस पुराने एरा में सेट हुई थी तो यश जी वांटेड वो म्यूजिक जो कि पुराने दिनों की याद दिला दे। और इतने म्यूजिक कंपोजर से बात करने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार म्यूजिक कौन देगा और कैसा देगा। एंड देन संजीव कोहली, हु इज द सन ऑफ लेट मदन मोहन जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके फादर की जो आर्काइव्ड कॉम्पोजिशंस हैं उन्हें एक बार देखा जाए। जब यश जी ने ये काम किया तो आपको पता है 35 धुनों को टेस्ट किया गया और उनमें से 11 धुनें आदित्य चोपड़ा ने फाइनल की। एंड दिस इज हाउ वी गॉट द ब्यूटिफुल एल्बम ऑफ वीर जारा। सही कहा है किसी ने कि प्यार और आर्टिस्ट कभी मरते नहीं, वो इस दुनिया से जाकर भी इसी दुनिया का हिस्सा रहते हैं। एंड बिफोर वी ट्यून इन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, आई शुड लेट यू नो कि वीर जारा की शूट के दौरान दिव्या दत्ता और शाहरुख खान को यश जी की डांट खानी पड़ी थी। क्यों? इज वेयर आई से आकर बताती हूँ। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये हंसी जो है ना कभी कभी गुस्सा भी दिलाती है। एंड वाइल शूटिंग फॉर वीर ज़ारा, यश चोपड़ा साहब को भी शाहरुख खान और दिव्या दत्ता की नॉन स्टॉप हंसी पर आया था गुस्सा।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। सो हुआ ये था कि देयर वाज दिस सीन जहां पर शाहरुख खान दिव्या दत्ता से मिलने पहुंचते हैं और दिव्या को उनसे मिलने के लिए पलंग से उठना था, और वो इस सीन को शूट करते करते दो बार फोर्स से उठी, और इतने फोर्स से उठी कि सेट की जो आर्टिफिशियल वॉल थी ना उनके पीछे, वो बार बार टूटे जा रही थी। अब आर्ट टीम जो है उसे बार बार आके उसे फिक्स करना पड़ रहा था। तो सबने उन्हें बोला कि आप फोर्स अप्लाई करके मत उठो। अभी इस इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी वो ये बात कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि वो फोर्स देकर ना उठे, और उसकी वजह से हुआ ये कि इवेंचुअली पूरी की पूरी वॉल उनके ऊपर आकर गिर गई। और इस हादसे के बाद आपको लगा होगा कि सब चौंक गए होंगे, लेकिन दिव्या दत्ता और शाहरुख खान फूट फूट कर अनकंट्रोलेबल हंसी हंसने लगे, जिस पर जब उनका हंसना बंद नहीं हुआ ना तो यश जी को उन्हें सेट से जाने को कहना पड़ा, और साथ ही ये भी कि जब उनका हंसना बंद हो जाए तभी वो अपनी हंसी को काबू में कर सेट पर आए। और आपको पता है उन लोगों ने कितना टाइम लिया इस चीज के लिए? 20 मिनट। 20 मिनट बाद ही वो सेट पर आए हैं, तब तक वो हंसते ही रहे। वैसे एक बात बोलूं, ऊपर वाला हर किसी को ऐसी हंसने की शक्ति दे भाई, और मैं शायद हंसने की ना सही लेकिन आपको मुस्कुराने की शक्ति जरूर दे सकती हूँ। कैसे? अरे म्यूजिक के जरिए यार। सो कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: स्वाभिमान सीरियल के शुरू होने के बाद से ना दिन में 3 बजे के करीब घर का हर हिस्सा सूना होता था सिवाय टीवी वाले रूम के।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I still remember the first episode of स्वाभिमान, जहां एक फोन रिंग ने अपना डेब्यू दिया था। एक फोन कॉल में सारे मेजर कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो गए थे पहले ही एपिसोड में। सेक्सी स्वेटलाना, होसेल ऋषभ, टूटी हुई अल्कोहलिक ऋषभ की माँ और ग्रीडी नौटंकी महेन चाचा और निशी चाची, याद है आपको?

दिस वॉज अ डायरेक्शन ऑफ देबलॉय दे एंड आलिया भट्ट के पप्पा महेश भट्ट। इस शो ने 800 एपिसोड्स पूरे किए थे और इस शो के जरिए काफी सारे चेहरों को पहचान मिली थी, जैसे कि रोहित रॉय, मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, राजीव पॉल, संध्या मृदुल, सिमोन सिंह, शरद कपूर और रिंकू धवन और काफी सारे जाने पहचाने चेहरों की परफॉर्मेंस भी इस सीरियल में हमें देखने के लिए मिली थी। सबसे सही बात जो मैं तब सोचा करती थी वॉज कि यार ये लोग कभी छत पर या सड़क पर या किसी खुले एरिया में कोई सीन क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम्स जब हम फिल्म्स देखते थे तो वहां पर तो आउटडोर लोकेशंस खूबसूरत लोकेशंस ही होती थी और ये सीरियल एकदम बंद बंद कमरों में डार्क डार्क सी फील दिया करता था। अब जब बड़े हुए हैं तो आई रियलाइज्ड कि डेली सोप्स का इतना बजट ही नहीं होता है कि हर रोज वो स्टूडियो से निकलकर शूट करें। बट ये सोचते सोचते ना मैं एक और चीज सोचती थी, एंड दैट वाज किट्टू गिडवानी का कैरेक्टर नेम स्वेतलाना। बट आई नेवर थॉट ऑफ गिविंग दिस नेम टू एनी ऑफ माई डॉल्स। क्यों? अरे क्योंकि स्वेतलाना का कैरेक्टर ही ऐसे पोर्ट्रे किया गया था ना यार, मासूम बचपन। उस टाइम में कोई स्वेतलाना के रोल को जस्टिफाई करता तो कैसे? ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ ना। बट हाँ, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि उस टाइम पर भले ही कहानी घर घर की टाइप सीरियल्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये जो सीरियल्स हुआ करते थे ना, इनकी पॉलिटिक्स से काफी घर वाले इंस्पायर हुआ करते होंगे, नहीं क्या? चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये गाना नहीं है, ये मनी रत्नम सर के ऊंचे विचार है, क्योंकि इसे शूट किया गया था चलती हुई ट्रेन की छत के ऊपर।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग छैया छैया। बाय द वे, डिड यू नो कि दिस सॉन्ग वाज ओरिजिनली टू बी डन बाय रवीना टंडन, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि उनका सपना, जो उन्होंने सोचा था कि वो मनी रत्नम के साथ कभी काम कर पाएंगी, वो पूरा होने से पहले ही अधूरा रह गया रुफत भी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्हें लगा था कि उन्हें एक्टिंग करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक डांस नंबर था। एंड देन शी डिसाइडेड कि शी इज नॉट गोइंग टू डू दिस डांस नंबर बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्होंने तभी शहर की लड़की किया था और वो उससे काफी फेमस हो गई थी, तो शी डिड नॉट वॉन्ट कि उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाए ऑफ यू नो अ डांस नंबर गर्ल, या उस टाइम की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आइटम गर्ल। और उन्होंने बड़े ही प्यार से इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। और उसके बाद फिर फराह खान, जो इस गाने की कोरियोग्राफर है, उन्होंने फिर से अपनी जो सर्च है वो शुरू कर दी फॉर दैट गर्ल जो शाहरुख खान के साथ ट्रेन की छत पर छैया छैया कर सके। एंड शी मेट मलाइका अरोड़ा बिकॉज एट दैट टाइम अरबाज खान एंड मलाइका अरोड़ा वर डेटिंग ईच अदर, एंड अरबाज खान फराह खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब उनकी मलाइका अरोड़ा से मुलाकात हुई तो उनको समझ में आ गया कि उनको वो लड़की मिल चुकी है। जहां रवीना को लगा था कि इस गाने की वजह से उनके करियर को अलग दिशा मिल जाएगी, वहां मलाइका के करियर को इस गाने की वजह से सही दिशा मिल गई और वो आज भी छैया छैया गर्ल के नाम से जानी जाती है। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। रूमी ने कहा है ना कि व्हाट यू चेज इज एक्चुअली चेजिंग यू। सही कहा है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज के टाइम पर हर बाथरूम में गीजर्स हैं। आपको 90s का टाइम याद है, जब गर्म पानी के लिए और नहाने के लिए हमें रॉड की लंबी लाइन में लगना पड़ता था।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और यार, मेरे घर में तो सर्दी के संडेज पर बड़ी ही लंबी वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी नहाने के लिए, क्योंकि एक रॉड, एक लोहे की बाल्टी और उम्मीदवार अनेक, मतलब एक अनार और 100 बीमार। भाई साहब, आज लाइफ तो बड़े इत्मीनान से कट रही है कि इंस्टेंट गीजर का स्विच ऑन किया और इंसान 10 मिनट बाद नहा भी लिया। इनफैक्ट आज तो बड़ी तमीज से अगले इंसान को भी हम पूछ लेते हैं कि अगर आपको पहले नहाना है तो आप नहा लो। ऐसे ऑफर हम पहले नहीं दिया करते थे, क्योंकि हमें पता था कि नहाना बहुत बड़ा टंडा होता था सर्दियों में। इतनी मुश्किलों से तो हमें रॉड में गर्म हुआ हुआ पानी जो है वो मिला करता था। तो मजाल है कि ऐसे में हम किसी और को आगे बढ़ा दें और अपना जो टाइम है नहाने का उसको भी आधा घंटा आगे बढ़ा दें। नो वेज। बाय द वे, सवाल टेढ़ा है पर मेरा है कि बड़े हमें हमेशा मना किया करते थे कि जब रॉड बाल्टी के अंदर पानी के अंदर लगी हुई है तो उसे हाथ नहीं लगाना है, यानी कि पानी में हाथ नहीं डालना है। लेकिन क्या आपने आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस वो किया जिसके लिए मना किया गया था, जस्ट टू चेक कि क्या होता है, क्यों बड़े मना करते हैं? मैंने किया था, लेकिन रिकॉर्ड है, आज तक कभी शॉक नहीं लगा। क्या आपने भी ये ट्राई किया था कि चलती हुई रॉड के पानी के अंदर आपने उंगली डाल के देखा कि वाकई में कुछ होता है कि नहीं होता है? अगर ऐसा है तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: You know why did Juhi Chawla and Aamir Khan stop working with each other?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा and you tune into Mirchi. And well, एक इंटरव्यू में जूही ने ये किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि जब वो और आमिर इश्क फिल्म में साथ काम कर रहे थे, आमिर यूज टू बी अ प्रैंकस्टर और अजय देवगन के साथ मिलके ये लोग ना लोगों के साथ प्रैंक्स खेलते ही रहते थे। तो बारी आई एक दिन जूही चावला की जब उनके साथ इन लोगों ने कोई प्रैक्टिकल जोक किया and she broke into tears because of that, had a fight with Aamir Khan and went back home, and agle din she did not turn up for the shoot, jiski wajah se Aamir unse bada naraz hue aur in dono ne is kisse ke baad 5 se 7 saalon tak baat hi nahi ki. Lekin jab unhe Aamir aur Reena ke divorce ka pata laga, so she rang up Aamir and asked him to meet her. And well, इससे साबित होता है कि इन दोनों दोस्तों ने बात करनी बंद की थी, लेकिन एक दूसरे की फिक्र करनी बंद नहीं करी थी। And this also says it all कि छोटी मोटी तलखियों से कुछ सालों के फासले आ सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते की नींव मजबूत हो ना बाबू मुशाय, तो रिश्ता लाइफ टाइम गारंटी कार्ड के साथ चलेगा। Coming up the next track with this, you stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
3: Dear, किसी के लिए विक्रम, किसी के लिए टेम्पो, तो किसी के लिए मकोड़े.
4: यादों को चिट्ठी.
3: तुम थे शहर की शान, भीड़ की जान. तुम्हारी वजह से बढ़ते हुए ट्रैफिक और धुएं से हम सब थे बड़े अनजान. पर अपनी साइज के मुताबिक तुम छोटी गलियों के लिए बने ही नहीं थे. तुम कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि चलता फिरता मोहल्ला थे. तुम्हारे लंबे चौड़े डिजाइन में जो सीटें बनी थी, उसमें न जाने कितने लोग समा जाया करते थे. और तुमसे बाहर लटकते हुए भैया चलो चलो चलो बोलकर और लोगों को उसके अंदर बुलाया करते थे. आगे ड्राइवर भैया की गद्दी, बीच में कसकर भरी सवारियां, और पीछे वाली सीट पर लटकते हुए कॉलेज के लड़के लड़कियां. ये नजारा तो हर रोज का था. तुम्हें देखकर लगता था मानो कोई गाड़ी नहीं, बल्कि चलता फिरता लोकल मेला हो. लगते तुम ऑटो रिक्शा के बड़े भाई थे, चलते स्टीयरिंग पर थे, और आवाज बुलेट के दादाजी की निकालते थे. तुम्हारे अंदर तो बैठने का मजा ही अलग था यार. दिल ही दिल दुआ ये रहती थी कि मेरे ड्रॉप से पहले भीड़ ना भरे और बिना किसी धक्का मुक्की के ना मैं सही सलामत उतर जाऊं. भैया जरा आगे बढ़ो ना, ये तो दिन में एक बार सुनने को मिल ही जाता था, जब सवारी पूरी ना होने पर ड्राइवर टेम्पो आगे नहीं बढ़ाता था. कमाल बात तो ये थी कि आज भीड़ से घबराने वाले हम न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग तुम में सट के बैठा करते थे. कभी किसी का पैर पैर पर पड़ जाता था, तो कभी किसी को कोनी घुस जाती थी. फिर भी हम मेरी स्पेस क्यों नहीं है का सवाल नहीं टटोलते थे. आज की चमचमाती कैब्स और सुकून भरी ई रिक्शाओं में भले आराम हो, पर तुम्हारी वो हलचल, तुम्हारी वो भीड़ भाड़ और तुम्हारे अंदर का वो मिनी बाजार जैसा वो माहौल था ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा. फिर एक दिन ऐसा आया जब तुम स्टेशन रोड पर से गायब ही हो गए. जो हमें ट्रैफिक लगा करता था, पोल्यूशन लगा करता था, फिर लगने लगा कि हाय, हमारी शहर की रौनक तो गायब ही हो गई है. सच कहूं तो तुम सिर्फ एक गाड़ी नहीं थे, तुम तो हमारे छोटे शहर का मोबाइल ड्रामा हॉल थे. तुम्हारी यादों में आज भी सफर करती तुम्हारी सवारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. और आप एक बात बताओ, आपके शहर में इस विक्रम, मकोड़े या फिर टेम्पो को क्या कहा करते थे? डीएम करके मुझे बता सकते हो. स्टे ट्यून्ड, रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: फिर तेरी कहानी याद आई। शायद ये फिल्म आपको याद नहीं होगी, लेकिन इसका ये गाना जो कि अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में है और कैसेट केस साइड बी का तीसरा गाना है, ये आपको सुनकर जरूर कुछ याद आएगा।
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: दिल में शर्म की सूरत, आंखों में आशिकी दे। यार ये गाना जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मोहब्बत में पड़ने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि यार हम इतने देर में क्यों मिले, हम इतने सालों बाद क्यों मिले, हम पहले ही क्यों नहीं मिल लिए। क्योंकि उनको पता है क्या महसूस हो रहा होता है कि यार मोहब्बत करने के लिए अब वक्त जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यार जिंदगी जीने के लिए चार चीजें और हैं, चार काम और करने हैं, मोहब्बत कब करेंगे। और ये इंसान जो इतना खूबसूरत इंसान है, हु इज मेंट फॉर मी, ये वाली जो फीलिंग आती है तो ऐसा लगता है कि यार इसके साथ हम वक्त बिताएंगे तो कब बिताएंगे, जिंदगी तो बड़ी छोटी सी लग रही है। काश कि हर किसी को ऐसा ही एक इंसान मिले जिससे मिलने के बाद उसे लगे कि यार जिंदगी जो है वो छोटी है। क्योंकि यार जब जिंदगी लंबी लगने लग जाती है ना, तो इसका मतलब आप थोड़े आजिज आ गए हो, बोर हो रहे हो अपनी लाइफ से। और जब आपको ऐसा इंसान मिल जाए कि आपको जिंदगी छोटी लगने लग जाए, तो ये अच्छी बात है, मान के चलो बहुत खूबसूरत जज्बात है। तभी तो इस गाने में कहा गया है कि दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। क्योंकि यहाँ ये मानना है कि कैसे करूँ मोहब्बत दो दिन की जिंदगी में, ये दिन तो बीत जाएंगे यूं ही हंसी हंसी में। एंड ऑनेस्टली आपको एक बात बोलूं, यही हमारी लाइफ का सच भी है बॉस। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम आज लड़ लेंगे कल मना लेंगे, लेकिन सच बात तो ये है बॉस कि किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना टाइम है, कौन कितनी मोहलत लेकर आया है इस दुनिया के अंदर। हमें लगता है कि जिंदगी लंबी है, लेकिन एक्चुअली नॉट। आनंद का वो डायलॉग है ना कि बाबू मशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और कल हो ना हो में शाहरुख खान ने भी तो कहा है कि हर पल यहाँ जी भर जियो, किसको पता कल हो ना हो। तो ये सारे जो आइडियाज है ना, जो आपको लग रहा है कि यार लाइफ बहुत बड़ी है, आज पंगे हो गए तो कल सॉर्ट कर लेंगे, आज को ऐसे जियो जैसे कल है ही नहीं। और फिर आपको देखना कितनी मोहब्बत होगी अपने लव्ड वन से। इनफैक्ट अगर आज आप ये ऑलरेडी फील कर रहे हो ना, तो आपसे खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। चलो जी, इसी बात पर जाते जाते यही गाना आपके लिए चलाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं तो आपको यहाँ के अलावा मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: हिंदी फिल्मों की प्रेम कहानियों का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हंसते गाते खेलते बच्चों ने प्यार किया है, उनके पिताओं ने उसका विरोध किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पता नहीं ये पिताजी लोग ठंड क्यों नहीं रखते थे, वाई वोंट दे जस्ट चिल। अभी मैंने प्यार किया फिल्म की बात करें, है लड़की के पापा तो ओके थे, लेकिन लड़के के पापा जो अमीर थे उनको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज उनकी क्लास ऊंची थी, उनके पास ज्यादा पैसा था। गरीब घर की लड़की, हमको नाइट चाहिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट मूवी का सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं, कयामत से कयामत तक, इसमें तो बहुत ही बड़ी विकट समस्या थी, खानदानी दुश्मनी। लेकिन नतीजा क्या निकला? दोनों बच्चों की मौत और पछतावा। तो काहे को प्यार का विरोध करना। वैसे इस मूवी ने, इसके गाने ने बाप बेटे के रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंथम हमको दे दिया था। तो सुन लेते हैं, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: प्यार मोहब्बत में जिए मरे जा रहे हैं, बाप की मौत के बदले का क्या? कब लेगा रे तू अपने बाप का बदला?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: भाई हिंदी फिल्मों में बाप की मौत के बदले वाली थीम तो पिछले जन्म से चले आ रही है।
1: हर डेकेड में पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें
0: बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ या उन्हें मार दिया गया और फिर फिल्म के हीरो ने वो होते हुए देखा और फिर बड़ा होके उसने उसका बदला लिया। लेकिन 80s तक आते आते ना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें ये हुआ कि जो माँ थी उसने अपने बच्चों को सारी मुश्किलें फेस करते हुए पाल पोस के सिर्फ इसीलिए बड़ा किया ताकि वो बड़े होके अपनी बाप की मौत का बदला ले सकें। रिवेंजफुल माँ जिसके बच्चे उसका हथियार, पिक्चर ब्लॉकबस्टर है यार।
1: ऐसी एक फिल्म राम लखन हा? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

दयावान फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म की स्टोरी क्या है, एक बच्चा अपने बाप को पुलिस के हाथों अनलॉफुली मरते हुए देखता है, पुलिस से नफरत करता है, बड़ा होके गैंगस्टर बन जाता है। पर हिंदी फिल्मों में पिताओं ने बहुत अलग अलग चीजें दी हैं बच्चों को, पैसा, प्यार, परवरिश, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, ट्रॉमा भी दिया है, लाइफ में लेसन्स, लाइफ में मोटिव भी दिए हैं, सबसे बड़ा मोटिव बदला। अच्छा एक फिल्म थी जिसमें बाप अपने बेटे के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छोड़ के गया था, एक गैजेट जिसको हाथ पे पहन लो तो इंसान गायब हो जाए, दिखाई ना दे, मिस्टर इंडिया। वैसे इस फिल्म में अनिल कपूर का जो किरदार था अरुण भैया, वो जिस तरह से कुछ अनाथ बच्चों को अपने घर में रखते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक वो एक फादरली लव की अलग ही डेफिनेशन है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

डॉन और डॉन का हम शक्ल विजय। हाई मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ 15-20 फिल्मों में डबल रोल तो किया होगा, जिसमें काफी फिल्मों में बाप बेटे का किरदार भी उन्होंने निभाया। एक तो अपनी टेलीविजन की जो राष्ट्रीय फिल्म है उसमें वो बाप बेटे बने हैं, सूर्यवंशम मूवी में, फिर एक लाल बादशाह। और पुरानी फिल्मों की बात करें तो आखिरी रास्ता, देश प्रेमी, अदालत, इन सारी फिल्मों में बाप भी अमिताभ बच्चन, बेटे भी अमिताभ बच्चन। और एक फिल्म में तो इन्होंने अति कर दी थी, बाप का रोल भी अमिताभ बच्चन और दो जुड़वा बेटों का रोल भी दोनों अमिताभ बच्चन। ट्रिपल रोल इन महान, महान ही है ये बंदा। वैसे अमिताभ बच्चन के उनकी काफी फिल्मों में उनके फादर से काफी ऐसे डिफिकल्ट से रिलेशनशिप रहे हैं, या फादर के किरदार की वजह से उनको काफी कुछ सहना करना पड़ा। उस बारे में भी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on.

0: शराबी फिल्म का गाना,
1: वही फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार विकी की जिंदगी के तंबू तीन बंबुओं पे खड़े होते हैं। शायरी, शराब और आप, ये आप इसमें है मुंशी फूलचंद, जो ओम प्रकाश जी प्ले करते हैं, जिन्हें अमिताभ बच्चन का किरदार फादर फिगर मानता है। वो इसीलिए बिकॉज उनके जो फादर है इन द फिल्म, जो प्राण साहब प्ले करते हैं, वो बहुत ही रईस बिजनेसमैन है। उनको पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए, तो बच्चा इग्नोर होके शराब पीना शुरू कर देता है। अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके जो फादर के साथ रिलेशनशिप रहे हैं इन द फिल्म, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, लेकिन बच्चन साहब ने वो रोल क्या एफर्टलेसली प्ले किए हैं। जैसे त्रिशूल मूवी भी, जहाँ पे वो बाप का बदला नहीं माँ का बदला लेते हैं बाप से, संजीव कुमार प्लेड हिज फादर ना। दीवार फिल्म में भी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैड विद हिज फादर, व्हाट ही थॉट अबाउट हिज फादर, यू नो, सत्यन कपूर जी उनका फादर प्ले करते हैं और उनके साथ जो भी होता है फिल्म में, अपनी फैमिली को वो अबैंडन करके चले जाते हैं। वो जो अबैंडन ह्यूमिलिएटेड बेटे विजय का रोल अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया है ना भाई, हैट्स ऑफ। देन आई थिंक एक और फिल्म जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फादर सन का दिखाया गया है, वो है शक्ति फिल्म, जिसमें फादर प्ले करते हैं दिलीप कुमार साहब और बेटे अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत सही है। चलिए इसी फिल्म का ये सही सा गाना भी सुन लेते हैं, पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गाना, सुपर्ब फैमिली ड्रामा जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। और अक्सर इस फिल्म में ना ये जो बच्चे खोने वाला दोष है, ये माँ पे निरूपा रॉय जी पे मर दिया जाता है कि हर फिल्म में बच्चे खो देती थी। हेलो, बाप के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? जो बाप का रोल प्ले करते हैं प्राण साहब इन द मूवी, वो बच्चों को पार्क में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। चलो सिचुएशन ऐसी होती है, गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं, बट बच्चों को पार्क में अकेला कौन छोड़ के जाता है? इसीलिए तो इधर उधर हो जाते हैं तीनों बच्चे, सब बिछड़ जाते हैं। अच्छा, एक और मूवी थी 1965 की, वक्त, जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। Well, that happens because of earthquake, लेकिन उसमें भी जो फादर का रोल बलराज सानी प्ले करते हैं, उनको ऐसा दिखाया जाता है कि उनको खुद पे ऐसे बहुत विश्वास होता है, वो डेस्टिनी में, टाइम में, किस्मत में, इन सारी चीजों में ऐसा बिलीव नहीं करते, और फिर उनके साथ वक्त अपना खेल खेल जाता है। खैर, इस फिल्म का एक गाना है जो अक्सर शादियों के लेडीज संगीत में फादर्स या दादाजी नाना जी की परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, जहां वो अपनी शरीके हयात, अपनी हमनशी, अपनी जोहर अजबी की तारीफ करते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi. It's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

एक और फादर चाइल्ड रिलेशनशिप जिसको हिंदी फिल्मों में बहुत एक्सप्लोर किया गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टैबू सब्जेक्ट है, विच इज इललेजिटिमेट यानी कि नाजायज बच्चा एंड फादर। अभी देखो यूजुअल ड्रिल क्या होता था पुरानी फिल्मों में कि हीरोइन जो है या वुमन कैरेक्टर जो है वो अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर वो क्लासिक क्लीशे डायलॉग आता था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एंड जो फादर है ही वुड चिकन आउट या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी था तो छुप छुप के, और देयर वुड बी सम अदर गुड मैन जो इस वुमन से शादी कर लेगा, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा, उनको प्यार परवरिश प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड आई थिंक आई यूज्ड, मतलब उनको सेफ रखेगा, उनके लिए प्रोवाइड करेगा। बट देयर इज दिस वन मूवी जिसमें सब्जेक्ट को इतना ब्यूटीफुली ट्रीट किया गया है ना, इट इज सो हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग एज वेल। ये है 1983 की मूवी मासूम। हैट्स ऑफ टू मासूम फिल्म की पूरी टीम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: आप पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इन सारी फिल्मों की बाप फिल्म है द आइकॉनिक कल्ट क्लासिक टाइमलेस मुगले आजम, और उसमें वो जो प्यार के दुश्मन पापा का रोल निभाया है ना पृथ्वीराज कपूर जी ने, हैट्स ऑफ, क्या एक्टिंग है उनकी, क्या आवाज है उनकी। वो मतलब वो प्यार के दुश्मन होते हैं तो भी आप उनसे रिलेट करते हो, खास करके जब वो कहते हैं कि बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने उसूलों के गुलाम हैं, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब वो एक शहंशाह भी हैं और एक वो बाप भी हैं। उसका जो उन्होंने पोर्ट्रेयल किया है ना, ऑसम। और वो एक बात जो अनारकली को कहते हैं, वो एक जो डायलॉग है वो सुनते हैं,
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
0: ओए होए होए होए, गूज़बम्प्स। किसी प्रेम कहानी में अगर किसी पापा ने विलन प्ले किया है ना, तो इन्होंने किया है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्च।

जॉनी मेरा नाम, मूवी का नाम, मेरा नाम है चारू। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स और मिर्ची। और ये जो मूवी थी ना जॉनी मेरा नाम, इसमें जो हेमा मालिनी जी का किरदार रहता है वो अपने लॉस्ट फादर को ढूंढ रहा होता है। और पुरानी फिल्मों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया हो, पोर्ट्रे किया गया हो। ज्यादातर बाप बेटा ही होता रहता था। अच्छा, दो फिल्में जो मुझे डिस्टिंक्टिवली याद आ रही है ना, जहाँ पे बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है, और ये दोनों फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की हैं। एक तो 1969 की आशीर्वाद, जिसमें अशोक कुमार फादर प्ले करते हैं और अपनी बेटी के बचपन में ही वो उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि एक जुर्म में उनको जेल हो जाती है। फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। दूसरी फिल्म 1967 की अनुपमा, जिसमें अनुपमा का रोल शर्मिला टैगोर ने प्ले किया है। इसमें इनके फादर के मन में इनके लिए बहुत कड़वाहट होती है बिकॉज इनको जन्म देते वक्त इनकी माँ गुजर जाती है, जिनसे फादर बहुत प्यार करते हैं। वैसे इस फिल्म के गाने भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये वाला सुन लेते हैं, हेमंत कुमार की कॉम्पोजिशन, कैफी आजमी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक बार बचपन में ना मैंने हेयर बैंड लगाया हुआ था सर पे, तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरे पापा ने बोला कि छोटे होते अगर हमारे पास भी ये होता ना तो देवानंद जैसा हेयर स्टाइल बनाना कितना आसान हो जाता। तो देवानंद साहब का वो जो पफ्ड हेयर स्टाइल था, आई थिंक पूरा 50s और मिड 60s तक, इट वॉज अ रेज। मतलब लड़कियां तो मरती थी उनके उस हेयर स्टाइल पे और लड़के उसे इमिटेट करने की कोशिश करते थे, जैसे कि मेरे पिताजी। मुझे याद है एक बार मेरे पापा टेप रिकॉर्डर पे गाने सुन रहे थे, तो एक गाना आया देवानंद का और मैंने अपने पापा के सर पे हेयर बैंड लगा दिया और बोला लो आप भी देवानंद बन गए। वो गाना सुनते हैं ना यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी हिंदी फिल्में और उनके बाप। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कितने अलग अलग तरह के फादर्स के किरदार हुए हैं हिंदी फिल्मों में। गरीब मजबूर बाप, उसूलवादी बाबूजी, अमीर घमंडी डैड, प्यार के दुश्मन पिताजी, या वो बाप जिनके लिए विलन से बदला लिया जाता था। और कितने अमेजिंग एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हैं। कुछ पॉपुलर नाम लूं तो AK हंगल साहब, नासिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, ओम प्रकाश जी, उत्पल दत्त जी, डेविड या अजीत साहब, कई बार विलन पापा भी होते थे ना, या फिर विलन प्लस कॉमिक प्लस कैरेक्टर रोल्स वाले कादर खान साहब, जीवन साहब, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम एंड हैट्स ऑफ टू रियल फादर्स जिनसे शायद ये किरदार कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो। वो रियल फादर्स जो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, थक भी जाएं तो आह भी नहीं भरते। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: कहते हैं हमारे माता पिता के हमारे लिए जो सैक्रिफाइसेस होते हैं कुछ तो हमको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ये तो हमको दिख जाता है कि त्योहार पे सबने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, बस पिताजी पुराना कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, लेकिन घर के बाहर वो हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ये हमको नहीं पता चलता। कई बार हमारी सब जरूरतें वो पहचान लेते हैं, पापा कुछ कहे बिना ही सब जान लेते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। एक और बहुत अच्छी लाइन्स मैंने पढ़ी थी कहीं, मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। और ये एक और शेर है, उनके होने से बख्त होते हैं, बख्त मतलब नसीब, अच्छे भाग्य, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। सभी लविंग फादर्स के लिए बहुत सारी खुशियां और अच्छी सेहत की कामना करते हुए मेरे यानी कि चारू की तरफ से है बाय। और किसी भी वजह से अगर आपके फादर आपकी लाइफ में नहीं है, जैसे मेरे पिताजी बहुत सालों से स्वर्ग में आराम फरमा रहे हैं, तो आपको जादू की जप्फी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, अब होती है मुलाकात जल्दी यहीं मिर्ची पर।
1: हाँ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले।

0: जैसे लिट्टी के साथ चोखा, रबड़ी के साथ जलेबी, मोमो के साथ लाल वाली चटनी, ठीक वैसे ही कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस नजर आने वाले हैं।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज न्यू कॉम्बिनेशंस जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से साल 2026 में हमें नजर आने वाले हैं। एंड दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्टर्स आर गोइंग टू ब्रिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी, केमिस्ट्री एंड एक्साइटमेंट ऑन द बिग स्क्रीन। देखिए ये फ्रेश पेयरिंग्स हैं व्हिच आर सेट टू हेडलाइन सम ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स अक्रॉस जॉनर्स फ्रॉम रोमांस एंड हॉरर टू फैंटेसी एंड एक्शन। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद राशा थडानी एंड अभय वर्मा, जिनकी मूवी आएगी लाइका एंड लाइकी, अ यूथफुल एंटरटेनर दैट हैज ऑलरेडी जनरेटेड अ लॉट ऑफ बज। मूविंग ऑन, नंबर दो पे हैं साई मांजरेकर एंड राघव जुयाल, इकाई है इनकी अपकमिंग फिल्म का नाम, और इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग स्क्रीन पर्सनालिटीज एक यूनिक डायनामिक जरूर दिखाएंगी इन द फिल्म। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे श्रीलीला एंड इब्राहिम अली खान जो हैं, व्हिच आर सेट टू हेडलाइन सम ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स अक्रॉस जॉनर्स फ्रॉम रोमांस एंड हॉरर टू फैंटेसी एंड एक्शन। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद राशा थडानी एंड अभय वर्मा, जिनकी मूवी आएगी लाइका एंड लाइकी, अ यूथफुल एंटरटेनर दैट हैज ऑलरेडी जनरेटेड अ लॉट ऑफ बज। मूविंग ऑन, नंबर दो पे हैं साई मांजरेकर एंड राघव जुयाल, इकाई है इनकी अपकमिंग फिल्म का नाम, और इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग स्क्रीन पर्सनालिटीज एक यूनिक डायनामिक जरूर दिखाएंगी इन द फिल्म। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे श्रीलीला एंड इब्राहिम अली खान जो इनकी अपकमिंग फिल्म का नाम, और इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग स्क्रीन पर्सनालिटीज एक यूनिक डायनामिक जरूर दिखाएंगी इन द फिल्म। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे श्रीलीला एंड इब्राहिम अली खान जो की तरफ, और मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ।

0: नहीं लेकिन दिमाग खराब तू चढ़ना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लो मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हुए बादशाह।